0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।

हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वच्छ भारत का है जन अभियान, घर घर तक ये पहुंचे पैगाम। गली गली सड़क सड़क पूरा शहर स्वच्छ हो, एक अकेला क्या करे इसमें सबका साथ हो। स्वच्छ बने ये भारत सारा, घर घर में फैले उजियारा। सफाई का ये पावन अभियान, मिलकर बनाएं भारत महान।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।

0: भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव CB George ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के

0: बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहियां पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in encounter with security.

ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। अग्निवीरों के पहले दस्ते को सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल करने का रियासती हुकूमत का फैसला। खुश्क साली की पहली फहरिस्त में शामिल न किए जाने वाले ताल्लुकों को ट्रिगर टू में दिया जाएगा फायदा। रोजगार गारंटी इसकी महकमे की जानिब से खुश्क साली से मुतासरा इलाकों के लिए 6728 करोड़ रुपये फराहम। जर्मनी की ऑडी कारों की तैयारी का छत्रपति संभाजीनगर के सनती इलाके शेंद्रा में आगाज। और एशियाई खेलों में भारत 53 तमगों के साथ 10वें नंबर पर। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने अग्निवीरों

ये पहली बैच के उम्मीदवारों को रियासती पुलिस फोर्स समेत दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल करने का फैसला किया है। वज़ीर-आला देवेंद्र फडणवीस ने कल काबीना की मीटिंग के बाद ये इत्तला दी, ये बताते हुए कि ये अग्निवीर इम्तिहान और तरबियत की शराइत से मशरूत नहीं होंगे और उन्हें उम्र की हद में 4 साल की छूट दी जाएगी। वज़ीर-आला ने यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर इनके लिए इजाफी आसामियाँ पैदा की जाएंगी। वज़ीर-आला ने कहा कि काबीना ने खुश्क साली की पहली फहरिस्त में शामिल न होने वाले ताल्लुकों को ट्रिगर 2 में फवायद फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर-आला ने बताया कि खुश्क साली के ज़िमन में कई वज़रा ने उनके महकमों के ताल्लुकों के ट्रिगर 1 में शामिल न होने पर उन्हें भी मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। इस खसूस में काबीना ने फैसला किया है कि ऐसे ताल्लुकों को ट्रिगर 2 और अगर उसमें भी शामिल ना हो सके तो इन ताल्लुकों में फसल की जाँच के बाद खुश्क साली के फ़ायदे दिए जाएंगे। काबीना के इजलास में रियासती लाइव स्टॉक डेवलपमेंट पॉलिसी का भी ऐलान किया गया। ये पॉलिसी मवेशियों के लिए ज़रूरी चारे की दस्तियाबी को यकीनी बनाएगी और डेयरी फार्मिंग और मवेशी पालने जैसे तकमीली कारोबार को फ़रोग देगी। मीटिंग में छत्रपति संभाजीनगर के वालूज में एक जूनियर सिविल कोर्ट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के क़याम को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ इसके लिए आसामियां और अखराजात का इंतज़ाम किया जाएगा। काबीना ने महाराष्ट्र जेल इसलाही खिदमत एक्ट 2025 अदालती माविन साइंसी लेबोरेटरीज़ के डायरेक्टोरेट के नज़रसानीशुदा ढांचे और महाराष्ट्र लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 में तरमीम को भी मंजूरी दी। वज़ीर ज़िराअत दत्तात्रेय भरने ने मरकज़ी हुकूमत से रियासत में बारिश की कमी की वजह से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल और आइंदा रबी के मौसम में मुमकिना मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए रियासत के लिए खसूसी इकदामात करने की दरख्वास्त की है। कौमी ज़िराअत कॉन्फ्रेंस रबी मुहिम 2026 के दूसरे दिन भरने ने कल मरकज़ी वज़ीर ज़िराअत शिवराज सिंह चौहान की सदारत में मुनाक़िदा कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के हालात बताए। भरने ने यह भी मुतालबा किया कि सिर्फ सेटेलाइट इमेज रिपोर्ट की बुनियाद पर पैदावार का तखमीना लगाने के बजाय इस साल फसल इंश्योरेंस स्कीम में फसल की असल सूरत हाल पर गौर किया जाना चाहिए। रोजगार की गारंटी स्कीम के महकमे ने खुश्क साली से मुतासर इलाकों के शहरियों को उनके गांव में रोजगार फराहम करने, उनके हाथ काम देने और उनके खानदानों को माली मदद फराहम करने के लिए 6728 करोड़ रुपये का फंड फराहम किया है। रोजगार की फराहमी के साथ साथ रोजगार गारंटी स्कीम के वजीर भरत गोगावले ने बताया कि इसके जरिए पानी की बचत, ज़रई इजाफी सहूलियात और देही बुनियादी ढांचे की तरक्की को तेज़ किया जाएगा। दरियासना रियासती सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड ने तमाम डिवीज़नल बोर्ड्स को हिदायत दी है कि वो 265 कैदज़दा तालुकों में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा से इम्तिहानी फ़ीस वसूल न करें। वज़ीर-आला देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सारथी को 122 करोड़ 34 लाख रुपए और अन्ना साहब पाटिल विकास महामंडल को 150 करोड़ रुपए का फंड फराहम किया है। ये इत्तला मराठा रिजर्वेशन की जैली कमेटी के चेयरमैन राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दी। उन्होंने कहा कि इस फंड से मराठा बरादरी के तलबा व तालिबात के लिए 8 हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के सरबराह राज ठाकरे ने फहरिस्त राय दहिंदगान के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ 4 अक्टूबर को मुंबई में मुश्तरिका मार्च करने का इंतबाह दिया है। वो कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये मार्च गैर सियासी होगा और मुल्क का तिरंगा झंडा हाथ में होगा, न किसी पार्टी का। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी का अवामी ज़िंदगी में 25 साल सफ़र जन सेवा से देश सेवा के नज़रिए से मुतासिर है और हुकूमत खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के नुक्ते नज़र से 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए काम कर रहा है। ये काम समाजी बाइख्तियार बनाने के जरिए शहरियों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहा है। नई तालीमी पॉलिसी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। मरकजी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम में जामे तब्दीलियां लाने के मकसद से कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी। 1986 के बाद मुल्क के लिए नई कौमी तालीमी पॉलिसी नाफिज की गई है। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में तालीम को ज़्यादा हुनर पर मबनी, कसीर शोबा और तलबा पर मरकूज़ करने की कोशिश की गई है।

0: इस मौके पर उन्होंने कहा,
1: बच्चों में रटने के बजाय सोचने की आदत विकसित हो, उनमें सवाल पूछने का साहस और समाधान खोजने की क्षमताएं पहली बार इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, स्किल बेस्ड लर्निंग, स्पोर्ट्स को बढ़ावा और टेक्नोलॉजी का उपयोग, इनसे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिल रही है।
0: कौमी तालीमी पॉलिसी में रिवायती 10+2 तालीमी ढांचे के बजाय 5+3+3+4 का नया तालीमी ढांचा तजवीज किया गया है। इस ढांचे में तलबा की हमजहत तरक्की, महारत पर मबनी तालीम और तजर्बाती तालीम पर जोर दिया गया है। पॉलिसी में प्राइमरी सतह पर तलबा को उनकी मादरी जुबान या मकामी जुबान में तालीम देने को अहमियत दी गई है। जर्मन लग्जरी कार कंपनी ऑडी ने छत्रपति संभाजीनगर के सनती इलाके शेनरा में मुंतजर तमाम नए ऑडी Q3 मॉडल की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी के CEO पीयूष अरोड़ा ने बताया कि यह चार पहिया गाड़ी ऑडी के प्रीमियम SUV के जमरे का एक अहम मॉडल 16 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। लातूर जिले के किल्लारी में शदीद तबाहकुन जलजले को आज 33 साल मुकम्मल हो गए। 30 सितंबर 1993 को सुबह 4 बजे के करीब आने वाले रेक्टर स्केल पर 6.3 की शिद्दत के इस जलजले ने इलाके के 50 से ज्यादा देहातों के हजारों मकानात को तबाह कर दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने मजीद 2 सोने के तमगे जीते हैं। शूटिंग में नीरो धांडा ने खवातीन के ट्रैप इन्फरादी जमरे में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। इसी जमरे में कल खवातीन की शूटर्स की टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। बॉक्सिंग में नरेंद्र बेरवाल ने 90 किलोग्राम जमरे में कांसे का तमगा जीता। गुलवीर सिंह ने भी मर्दों की 5000 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। खवातीन की टीम ने 400 मीटर रेले में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि मर्दों की टीम ने इसी जमरे में कांसे का तमगा हासिल किया। भारत अब इस मुकाबले में कुल 53 तमगों के साथ 10वें मकाम पर पहुंच गया है। इन तमगों में 6 सोने, 21 चांदी और 26 कांसे के तमगे शामिल है। औरंगाबाद डिवीजन के ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के लिए नामजदगी का अमल कल से शुरू हुआ। पहले रोज 19 ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों ने 30 कागजात नामजदगी हासिल की, ताहम कल एक भी दरख्वास्त दाखिल नहीं की गई। रियासत में खुशसाली से मुतासर किसानों को फौरी तौर पर हंगामी फंड से 50,000 रुपये फी हेक्टर इमदाद का मुतालबा भारतीय किसान संघ ने किया है। किसान संघ की जानिब से कल रियासत के तमाम तहसील दफातर के तहसीलदारों के जरिए वज़ीर आला को इस मुतालबे का मेमोरेंडम भेजा गया है। नांदेड़ ज़िले में फसल की कटाई के तजुर्बे के लिए मुंतखब किसानों से ज़िला कलेक्टर राहुल कार्डीले ने तजुर्बा मुकम्मल होने तक फसल की कटाई न करने और हल न चलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से फसल की कटाई से मारूजी मुआवजे के तायुन के लिए दरकार फसल की कटाई के तजुर्बात मुतासिर हो सकते हैं। दरियासना कर्डीले ने ज़िले में दस्तियाब सब्ज़ और खुश्क चारे की ज़िले से बाहर फरोख्त और नकल व हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। धाराशिव में वाक़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जैली कैंपस में कल भारतीय इल्म के मौजू पर एक कौमी सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में पुणे की हेरिटेज फाउंडेशन के भुजंग बोबड़े और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल पर गवर्नर के मुकर्रर करदा रुकन डॉक्टर गजानन सानप ने रहनुमाई की। इस मौके पर तैर में हेरिटेज वॉक भी की गई। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। अग्निवीरों के पहले दस्ते को सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल करने का रियासती हुकूमत का फैसला। खुश्क साली की पहली फहरिस्त में शामिल न किए जाने वाले ताल्लुकों को Trigger 2 में दिया जाएगा फ़ायदा। रोजगार गारंटी स्कीम महकमे की जानिब से खुश्क साली से मुतासर इलाकों के लिए 6,728 करोड़ रुपये फराहम। जर्मनी की ऑडी कारों की तैयारी का छत्रपति संभाजीनगर के सनती इलाके शेंद्रा में आगाज। और एशियाई खेलों में भारत 53 तमगों के साथ 10वें नंबर पर। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नशर होगा।
2: Kilohertz अर्थात 1305 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। सकाळचे 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी
3: हे कस्टमर

0: ही प्रोग्राम में अभी अभी ये शब्द सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ प्रमुख घटनाओं के जिक्र का। आज 30 सितंबर है और आज की तारीख में खेल से लेकर सिनेमा तक कुछ ऐसे पन्ने दर्ज हैं जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। साल 2003 में आज ही के दिन भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में तिरंगा लहराया था। वे चेस की दुनिया के वे बादशाह हैं जिन्होंने भारत में इस खेल की परिभाषा ही बदल दी, और आज देखिए कितने ग्रैंड मास्टर्स भारत ने दिए हैं। साल 2009 में आज ही के दिन संगीत के महानायक और प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को साल 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि आज भी जब हम उन्हें सुनते हैं तो रूह खुश हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद यानी साल 2010 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दशकों पुराने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला विराजमान, नरमोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का आदेश दिया था, जिसने आगे चलकर इस पूरे मामले को नई दिशा दी। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज हमारे सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही किया था। और यहां हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। हम याद कर रहे हैं उर्दू साहित्य और शायरी के उस मुकद्दर को जिन्होंने उर्दू अदब को एक नई दिशा दी। आज महान कवि, लेखक और आलोचक अल्ताफ हुसैन हाली की पुण्यतिथि है। हाली साहब का जन्म 1837 में पानीपत में एक विद्वान अंसारी परिवार में हुआ था। तंगहाली के बावजूद उनका पढ़ने का जज्बा ऐसा था कि वे दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्हें उर्दू के सबसे महान शायर मिर्जा गालिब का साथ मिला और वे उनके सबसे चहेते और आखिरी शागिर्दों में से एक बने। हाली साहब ने रूढ़िवादी शायरी छोड़कर समाज को जगाने वाली कविताएं लिखी। उन्होंने एक महाकाव्यात्मक नज्म लिखी मुसद्दस ए हाली। इसके अलावा उनकी नज्में हुब्बे वतन यानी कि देश प्रेम और बरखा रुत आज भी साहित्य के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने गालिब की जीवनी यादगार गालिब भी लिखी। हाली साहब की शायरी सिर्फ दिल बहलाने वाली नहीं थी बल्कि जिंदगी में हमेशा कुछ बेहतर तलाशने का एक फलसफा थी। उन्होंने बेहद मशहूर गजल में ये कहा है कि इंसान को कभी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए बल्कि हमेशा सर्वश्रेष्ठ की तलाश करती रहनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन हाली के इस बेमिसाल साहित्यिक योगदान, समाज सुधार और उनकी

विद्वता को देखते हुए साल 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान और उपाधि शमसूल उलेमा यानी विद्वानों का सूर्य से नवाजा था। और आज ही जयंती है सादगी के सबसे बड़े जादूगर, महान फिल्म निर्देशक, लेखक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी की, जिन्हें प्यार से पूरी इंडस्ट्री ऋषि का दा कहती थी। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिका दा ने विज्ञान और गणित की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें रुपहले पर्दे की दुनिया में ले आई। कोलकाता में मशहूर फिल्म मेकर बिमल रॉय के प्रोडक्शन में एक कटर और एडिटर के रूप में ऋषिकेश ने अपने सफर की शुरुआत की थी। यही उनका असली सिनेमाई घराना बना, जहां उन्होंने 2 बीघा जमीन और देवदास जैसी क्लासिक फिल्मों की एडिटिंग की। बाद में वे मुंबई आ गए। 1957 में फिल्म मुसाफिर से बतौर निर्देशक कदम रखा। उन्होंने राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स को उनके करियर के सबसे बेहतरीन और यादगार भूमिकाएं दी। ऋषिका दा ने हमें आनंद, बावर्ची, चुपके चुपके, अभिमान और गोलमाल जैसी कालजयी फिल्में भी दी, और उनकी फिल्मों के गाने आज भी हर पीढ़ी की पहली पसंद है। सुनते हैं फिल्म खूबसूरत का ये गीत, पिया बावरी।

0: सिनेमा में उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1999 में देश के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें साल 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनकी फिल्मों में जैसे आनंद और अनुराधा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और एडिटर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। उनकी फिल्म आनंद का एक डायलॉग आज भी हम सब के जीने का फलसफा है।
1: क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने, मौत एक पल है बाबू मुशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं बाबू मुशाए, जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो डर की बात था।
0: बहुत खूब, आज भी इससे लोग अपना फलसफा मानते हैं। तो आइए फिल्म आनंद से ही वो सदाबहार और दार्शनिक गीत सुनते हैं जिसे मन्ना डे की शानदार आवाज ने अमर कर दिया है।
2: जिंदगी कैसी है पहले।

ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम और शमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के आज़म के तई अपनी अहदबस्तगी की तौसीक की है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमरीका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़राए तजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगी। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2026 को तारीखी साल करार दिया है। कल नई दिल्ली

में भारतीय बैरिया की साल में दो बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये पेशरफ घरेलू बैरी जहाज साजी निज़ाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के उसूल से मुतालिक बैरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बैरिया का बैरी जहाज़ों की तैयारी का इको निज़ाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए बैरी जहाज 75% से ज़्यादा देसी साख्त के हैं। वजीर दिफा ने मौजूदा निज़ाम की अहमियत का एतराफ़ करते हुए भारत के बैरी निगरानी निज़ाम में खातिर ख़ा अपडेट पर जोर दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बैरी आमदोरफ्त का बढ़ता हजम और पेचीदगियाँ तजियाती सलाहियतों की मांग करती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़्यादत में बैरिया की जदीदकारी के हुकूमत के आज़म को नुमाया करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के नज़रिए की तकमील में भारतीय बैरिया स्ट्रेटजिक तौर पर अहम रोल अदा करेगी। चुनाव कमीशन ने नौजवान वोटर्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंदराज को यकीनी बनाने के मकसद से दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इंदराज के लिए खसूसी कैंपों का एहतमाम किया है। कल बड़ी तादाद में तलबा खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR के बारे में मालूमात हासिल करने और इंतखाबी फॉर्म हासिल करने या दाखिल करने के लिए इन कैंपों में पहुंचे। कैंप आज भी जारी रहेंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इन कैंपों में मौजूद BLOs तलबा के फॉर्म भरने, भरे हुए फॉर्म हासिल करने और SIR से मुतलिक सवालात के हल के लिए उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। कैंपों का एक और मरहला अगले माह की 7 और 8 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम ज़िले में कल शाम सलामती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का एक चोटी का दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द की शनाख्त लश्कर तैयबा के चोटी के कमांडर फौजी मूसा के तौर पर हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फ़ौज की चिनार कोर ने कहा कि ये कार्रवाई बडगाम में योसमर के नज़दीक कोराग में फौज पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने मुश्तरक तौर पर अंजाम दी। मूसा जम्मू और कश्मीर में कई हमलों में मुलविज होने की वजह से मतलूब था। 5 सितंबर को यूसमर्ग में हुई मुठभेड़ में वो बच निकला था, लेकिन उसका करीबी मुआविन यासिर हलाक हो गया था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने कल मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में उगाए गए लिलियम के फूलों की पहली कमर्शियल कार्गो परवाज़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब सक्सेना ने बताया कि ये कमर्शियल कार्गो लद्दाख की ज़रूरी तारीख़ में नए बाब का आगाज़ है। जनाब सक्सेना ने कहा कि बागवानी फूलों के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और लद्दाख के मुआफिक आबो हवा और दर्जे हरारत के सबब आला मेयार के साथ हौसला अफजा कामयाबी मिली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जहां वो जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर दाखिला इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये यात्राएं, जिनका आगाज़ BJP के कौमी सदर नितिन नबीन ने इस महीने की 18 तारीख को पठानकोट से किया था, 13 दिनों में सभी 117 असेंबली हलकों में 4000 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी है। इन यात्राओं का मकसद पंजाब में मनुष्यात के खिलाफ लड़ाई को अवामी तहरीक बनाना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और शमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने साहली आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने आज दिन में मतला साफ रहने की पेशगोई की है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और कम अज़ कम दर्ज हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के तहत अपनी अहद बस्तगी की तौसीक की है।
وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلیٰ سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کا موقف پیش کیا۔

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: केवळ प्रेम व्यक्त करणं एवढंच नाही. या प्रसंगाचे विश्लेषण करताना असं म्हणता येईल, पात्र आधी बोलत नाही, ते आपल्या मनाशी बोलतं आणि मनाशी झालेला संवाद हा शेवटी गीत बनतं.
1: कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी. मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका. और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: आकाशवाणी परभणी केंद्र. हॅलो, आकाशवाणी कार्यक्रम कोण बोलत आहे?
1: हाँ नमस्ते ताई, नमस्ते.
0: नमस्कार, बोला, काय म्हणता?
1: रहीम खान बड़ान बात कर रहे हैं. परमन से ताई कैसे हैं? अच्छे हैं.
0: मैं बहुत अच्छे हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया है, मजो में है. वो कहते हैं ना, थाली थाली में केक और अपनी परभणी आकाशवाणी पूरे केंद्रों में नंबर एक.
0: क्या बात है, नंबर एक तो है.
1: हमारे आकाशवाणी जब चलती है तो ऐसा नहीं लगता है कि हम ऐसा इधर उधर बात कर रहे हैं. जब रेडियो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. तभी
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया.
1: बारिश का मौसम तो खत्म हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है.
0: नहीं, आपल्या परभणी मध्ये एकच सीझन आहे फक्त, तो पण उन्हाळाच. इतका
1: बस बस
0: ऊन पडत आहे की बस.
1: हाँ, कारण कसं झालं ताई, आता आपल्या मराठवाड्यामध्ये कारण 6 महिन्याचा उन्हाळा आणि 6 महिन्याचा हिवाळा झालेला आहे. आता बघा, सध्या इतकी गर्मी वाढलेली आहे की काय, आम्ही काम करतो आरसीसी बिल्डिंग वरच्या, तर आमचे लई परेशानी वाली ते काम करतामुळे. लोकांनी इतका गरम वाला की ज्याची हद नाही.
0: खरे,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता निपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के

0: साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या व्यूज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 1:05 होत आहेत। प्रसारित करत आहोत गीत बहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आपण ऐकणार आहात अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर आणि सहकारी यांच्या स्वरात कैवारी या चित्रपटातलं गीत। गीत आहे जगदीश केबुडकर यांचं आणि संगीतकार आहेत प्रभाकर जोग।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।

0: आता थोड्याच वेळात म्हणजे ठीक 2:15 दुपार समाचार हे बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होत आहे. आम्ही ते सहक्षेपित करतोय.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज. सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए. इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना. भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की. मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा. नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित. जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता. 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई. और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. अब समाचार विस्तार से. सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं. ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है. ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे. नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा. ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा. यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा. ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे. ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे. इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है. इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं. नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया.

0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में $94.50 अरब से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है।

0: पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया के तमाम चुनौतियों तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
2: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
3: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी

0: से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन हैं। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
1: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है गेस्ट ये सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
0: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
2: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रेवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
0: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
3: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स टीम कंपाउंड ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs today approved an increase in the minimum support prices MSPs for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
2: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से
3: द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर द रबी सीजन विल ब्रिंग एन एडिशनल 84,263 करोड़ रुपीस टू आवर फार्मर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स एमएसपी इज डिटरमाइंड थ्रू अ वेल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर

0: एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे भारतीय धनुर्धरैः स्वर्ण पदकानां हैट्रिक इति त्रयो विजयः समासादितः। मुष्टिद्वन्द्वे च मिश्रित ट्रैम्प दलेन स्वर्ण कमलं विकसितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य आर्थिक कार्य मंत्री मंडलीय समित्या प्रवर्तमान वित्तीय वर्षस्य कृते सर्वेषामपि राबी सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्येषु श्लाघ्या वृद्धिः समनुमोदिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः व्यजिज्ञापत् यत् कृषक हित रक्षणार्थम् असौ निर्णयः समाश्रितः। अनेन कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 570 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13400, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मानतः परिवर्धनं विहितम्।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: मन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् समित्या नवदिल्ली आरक्षिबलैः 80+7,00,000,000,000 व्ययेन प्रवर्तमाना प्राज्ञ यातायात प्रबन्धन प्रणाली योजना अपि स्वीकृता।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: एतदतिरिच्य मन्त्रिमण्डलेन हरित ऊर्जा वीथी इत्यस्य तृतीय चरणम् अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35+100 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतीय प्रशासनस्य ऊर्जा मन्त्रालयेन देशे समुपलब्ध यात्रीवाहनानां इंधन संरक्षण दक्षताम अभिलक्ष्य नूतना CAAFE इति संस्थागत मध्यमान इंधन दक्षता मानदंड नियमाः सम्यक् अधिसूचिताः। एते नूतनाः मानदंडाः 27+2000 वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् समारभ्य 33+2000 वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यन्ते। ये च पूर्व प्रवर्तितानां मानदंडानां स्थानम् अलंकरिष्यन्ति। एतद्विधानं भारते विक्रयार्थम् उत्पादितानां अथवा आयातितानां वा सर्वेषामपि नूतन यात्रीवाहनानाम् उपरि समानभावेन नियंस्यते। इयं हि नियमरचना वाहन निर्माण उद्योगस्य कृते महतीं नीतिस्थिरतां कार्यसुगमतां नियमन स्पष्टतां च प्रदास्यति। योजनेयं प्रौद्योगिकी नवोन्मेषं समेधयन्ति भारतस्य वाहन क्षेत्रम् उत्तरोत्तरं ऊर्जा दक्षतां न्यून इंधन व्ययं च प्रतिनेष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन दोहा नगरे कतार व्यवसायिभ्यः भारतेन सह वाणिज्य निवेश संबंधान सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवती। सा भारतस्य द्रुत विकासं प्रवर्तनान् वर्षस्य 94.5 बिलियन डॉलर मितं कीर्तिमयं प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशं FDI इति तथा हि जापान क्रेडिट रेटिंग संस्थया भारतस्य ऋण क्षमता निर्धारणे कृताम् उन्नतिम् उक्तवती। वित्तमन्त्रिणा होमोर्स जल सन्धौ अबाधित सामुद्रिक वाणिज्यं पुरस्कृत्य गल्फ देशैः सह व्यापार पुनरुद्धारस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। उपवेशनेऽस्मिन् कतार देशस्य 10 बिलियन डॉलर मितस्य निवेश संकल्पस्य कार्यान्वयनं, भारते तस्य कार्यालय स्थापना अथ द्विपक्षीय निवेश सन्धि सम्बद्धा वार्ता द्रुतगत्या चालयितुं सहमतिः जाता। संस्कृत वार्ता।

0: कृत संकल्पान् सर्वदा परिपूरयति। गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनेन जम्मू कश्मीर क्षेत्रे आतंकवादः पूर्वोत्तर राज्येषु च उग्रवादः समूलं निरस्तः। सम्प्रति च पंजाब राज्यस्य व्यसन मुक्तिः एव शासनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति। शहीद भगत सिंह उद्धम सिंहादि पंजाब भूमेः वीर हुतात्मभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पयन् असौ व्यथया व्याजहार यत् पुरा शौर्य कृषि समृद्धिभिः प्रथितं राज्यमिदं अधुना वर्धमानेन मादक द्रव्य व्यसनेन संतप्यते। अद्य नवदिल्ल्यां ASSOCHAM संस्थया आयोजितं राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलनं सम्बोध्य केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्राह यत् पर्यटन क्षेत्रमिदं सम्प्रति केवलं भ्रमण विनोद विश्रामेषु परिसीमितं नैव भूत्वा अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभत्वेन अथ वृत्त्यवसरस्य च प्रमुख स्रोतत्वेन संवृत्तम्। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् वैश्विकानां भूराजनैतिक अनिश्चिततानां मध्ये अपि भारतस्य पर्यटन क्षेत्रम् अविरतं समृद्धिम् अवाप्नोति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणक्रमे भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः न्यगादीत् यत् विशुद्धा अद्यतनीकृता च मतदातृ सूची लोकतन्त्रस्य आत्मा वर्तते। असौ निर्वाचन अनियमितताः अधिकृत्य विपक्षेन कृतान् सर्वानपि आक्षेपान् दृढतया प्रत्यख्यात्। जापान देशे आयोज्यमाने एशियन गेम्स इति क्रीडा महाकुम्भे भारतीय दलेन अद्य यावत् श्रेष्ठतमः प्रदर्शनक्रमः प्रदर्शितः यत्र एकेनैव दिने चत्वारि स्वर्णपदकानि विजितानि। भारतीय धनुर्धरैः कंपाउंड आर्चरी इत्याख्यायां स्पर्धायां महिलादलं मिश्रितदलं पुरुषदलं वर्गेषु च विजयं प्राप्य स्वर्णपदकानां हैट्रिक इति कीर्तिमानं रचितम्। एतस्मिन् अन्तराले पुरुषदलेन चीनदेशस्य दलं प्रत्यभिभूय अप्रतिमं स्वर्णपदकं स्वायत्तीकृतम् इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसह आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। 6:30 वाजले आहेत। बलसागर भारत हो।

0: और संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी।

0: लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
0: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की वो स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक

0: सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में

0: 50 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oilseeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
3: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue hain.
2: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी, SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत उहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
4: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर्याय है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं, तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR के पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है। और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे BLO हो ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है और इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गाँव हिसाब से दिखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी, और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है

0: तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंस के बात करके अगर नोटिस गया है तो उनके पास बीएलओ जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेकर आएगा। यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है। क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है। यहाँ एक एन्यूमरेशन एक प्रक्रिया है, तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं करें हम?
1: कहा, और देखिए मैं भी दिल्ली का मतदाता हूँ और मेरे परिवार में चार लोग हैं, चारों मतदाता हैं और चारों को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था, लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही है, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
2: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
1: जी,
2: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। फिर तीन सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी
1: जी।
2: बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूँ, जब बलराज मदोक उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए, जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है, जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस भ्रष्ट भूमिका में अगर हम बात करें जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की, और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकेपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
1: जी।
2: तो कहा गया नहीं नहीं ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने, यानी कभी भी तुझ भी मेरी पट भी मेरी। तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है, विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
1: बिल्कुल,
2: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गर्मा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे

0: हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है, उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथा कथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्षी दल नहीं आए हैं। यानी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है और समय समय पर सरकारें बदली हैं और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो, अगर मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अच्छा जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECINET नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बचाऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है उसका जो दाखला करने की जो उपाय है तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया उनका स्पष्टीकरण दिया है, बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमिटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है, फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि कोई रोल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया
1: जी।
2: दूसरी बात है राजनीति इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो ये एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा, ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ इन दिनों ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है वो, जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है और जो विपक्ष में है उनका और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व तो बनता है, ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना मुझे

0: लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है। जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपेंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है और ऐसे भी लेना चाहिए, बात नहीं कि ये उनका दायित्व है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका की पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस वो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना या फिर उनके पूरे एसेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: देखिए, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने भी लाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। तो मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है। अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं, लेकिन जब लोग देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली। तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए अभी बात

0: कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें है खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम
1: जी।
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, ना कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़े और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है, लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई, क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोकने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए, मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोला, जैसा यार नहीं बोलकर और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था उसमें भी करना आवश्यक है, लेकिन थोड़ा SIR जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्यों, एक बेस फिर से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है और SIR में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है अभी, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था। ये SIR का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा, इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं हम और SIR के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी शायद पिछले ही हफ्ते

0: थी कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 साल के हो चुके हैं।
1: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, यानी इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को, जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से, लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको सबको जोड़ना चाहिए। और शायद आपने जैसे कहा, उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें SIR में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा। लेकिन आप SIR को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और SIR के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को, आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार SIR करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है। पिटीशन देने का लेवल ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं, तो आप DEO के पास जा सकते हैं, CEO के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, 1-2-3 गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है। अगर एक जो वैध आदमी, जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है, उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में ऐसे स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल, देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
2: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे, उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी आगे रहता है, चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से, लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
0: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
2: नहीं, मैं समझता हूँ कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता हैं, जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं हैं, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी SIR प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया है, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
0: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है।

0: वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: खेलों का इतिहास पुराना है, लेकिन कुछ खेलों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि। और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया, लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
7: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानी पार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की 3 टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
6: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ मिक्स ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का 4th स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
8: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में ये भारत का 3रा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
6: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने

0: साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी। आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
1: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, bahut zyada effort de rahe hain, bahut zyada training kar rahe hain, to kuch to positive aayega।
0: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंशिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया। पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज जन्नाटेदार शॉट लगाया, जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए जबकि कोरिया को 3 मिले और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां अब 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद। पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य। तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
2: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई। वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
0: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौध ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वाश के सितारों की कहानी।
2: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम

0: मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकेंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा, 6-6 की बराबरी पर। उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए, लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की टाइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6, 4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
0: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गई।
1: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
0: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गईं। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताकी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
1: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेंस टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अलावत और युवराज संधू 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर है। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
1: और अब बारी सेपक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
1: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भाजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
3: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में

0: आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोंजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ पांचवें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ तीसरे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है, कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्त ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रही, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। केनो में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
1: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
2: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय शेनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। इस स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।